0: It really couldn't be simpler. Watch the latest news while simultaneously learning German with Kurz und Leicht. Check out 3 current news events in subtitled videos. Challenging German words are explained quick and easy, short and sweet. Find us on dw.com, Kurz und Leicht, and social media. Video news for learning German, Kurz und Leicht.
1: जी उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो।
0: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
1: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी, मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है। फिर मैं एक दफा फिर से मेरा जुनून ताजा हुआ, फिर से मैंने इस चीज को और ज्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया।
0: Find out about Ali's story. Info Migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.